24 मिनट और 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ढूंढता है। और अब इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपकी नजर करते हैं। फिल्म है सितारा, गायक कलाकार भूपेंद्र और लता मंगेशकर, संगीतकार आरडी बर्मन और गीतकार गुलजार। और दोस्तों इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: नमः श्रोतृवृन्देभ्यः, स्वागतमस्ति भवतां संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे, यत्र वयं संस्कृत जगतः नानाविधान् ज्ञान संप्रिक्तान् हर्षाभिवर्धकान् घटनाक्रमान् वार्ताश्च शृण्मः। अहमस्मि कार्यक्रमस्य समुद्घोषकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। मान्याः, अस्मत् संस्कृत शास्त्रेषु नीतिपरकाणाम् उपदेशानां महत्तमः संग्रहः अस्ति। तस्मादेव संग्रहात् शृणुमस्तावत् अद्यतनं सुभाषितं, मधुरस्वरेण च प्रस्तौति श्री पुनीत त्रिपाठीवर्यः।
1: सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्, तद्भावे हि भावानां सर्वाभाव शरीरिणाम्। अर्थात संसार से हमें जो भी पुरुषार्थ या कार्य करना है, वह हम अपने स्वस्थ शरीर से ही कर सकते हैं। इसके अभाव में हर वस्तु का अभाव हो जाता है। इस प्रकार यह एक सर्वोत्तम धन है, अतः इसकी देखरेख सर्वोच्च प्राथमिकता से करनी चाहिए।
0: श्रीमते पुनीताय साधुवादाः। मित्राणि, मन्येऽहं स्मरन्ति भवन्तः प्रसङ्गः इति अस्ति अग्रिमा प्रस्तुतिः। चलामस्तावत् सुरेश शर्मणं प्रति, यो हि इदानीं सन्नद्धोऽस्ति प्रसङ्गस्य प्रस्तावनाय। सुमधुरस्वरेण च प्रस्तौति प्रसङ्गमेकम्।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 9 तारीख है और दिन है रविवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। अब से लेकर रात के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री लामसरिंग, श्री हिमांता स्वर्गरी और श्रीमती शिखा देखा, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंता के सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अशुत बर्मन, मोनपा उद्घोषक है श्री लोपसा नोरबू और मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका सांगे थामू। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

0: at the Korea Masters 2026. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवावरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे

0: राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
2: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
3: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर JKLM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने CBI और ED जांच, JPSC JSSC परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से 4 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद GT रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री

0: दिल्ली से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला बी

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवा केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुनेंगे लामा के संग और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। तो पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: Also.
1: Dear my

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लामा के संग और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे है। श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे हागे दादा और साथियों से चंद आपातानी आधुनिक गीत। तो पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: मध्य कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवा केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं और पेशे कार्यक्रम मेरी बात, इसमें आज दोजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के 5वें सत्र में पढ़ रही छात्र खांडू पेमा परीक्षाओं के दौरान तनाव से कैसे निपटाना है, इस पर अपने विचार साझा करेंगे। तो पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खांडू पेमा है। मैं दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय की 5वें सत्र की छात्रा आपके समक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूंगी जो हर विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा है। परीक्षाओं के दौरान तनाव से कैसे निपटे, यानी हाउ टू डील विद स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। परीक्षा जीवन का वह चरण है जिसमें विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के साथ साथ कई बार तनाव, चिंता और दबाव भी बढ़ जाता है। यह तनाव स्वाभाविक है, लेकिन अगर इसे ठीक तरीके से संभाला ना जाए तो यह हमारी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम समझे कि तनाव होता क्यों है और इसे कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आवश्यक है सही योजना। जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बिना किसी योजना के शुरू करते हैं तो काम बढ़ता जाता है और मन में घबराहट पैदा होती है, लेकिन अगर वही पढ़ाई समय के अनुसार बांटी जाए तो न केवल बोझ कम लगता है बल्कि मन में एक संतुलन भी बना रहता है। एक सरल सा टाइम टेबल जिसमें पढ़ाई, आराम और हल्की गतिविधियों का संतुलन हो या तनाव को काफी कम कर देता है। परीक्षा के समय याद रखने की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शरीर और मन दोनों को आराम चाहिए। कई विद्यार्थी पूरी रात जाग कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ध्यान भटकता है। नियमित नींद, पौष्टिक भोजन और पानी का पर्याप्त सेवन मन और शरीर दोनों को शांत रखते हैं। यदि मन भारी लगे तो कुछ मिनट गहरी सांस लेना, हल्का संगीत सुनना या थोड़ी देर टहलना बहुत सहायक होता है। अक्सर तनाव इसलिए भी होता है क्योंकि विद्यार्थी खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी दोस्त ने अधिक पढ़ लिया, किसी ने जल्दी तैयारी शुरू कर दी, इन सब बातों के कारण मन विचलित हो जाता है। लेकिन हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही अनुसार आगे बढ़े और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। तुलना हमेशा तनाव देती है, जबकि आत्मविश्वास तनाव को दूर करता है। परीक्षाओं के समय परिवार और शिक्षकों का समर्थन भी बहुत जरूरी है। यदि मन में कोई डर या उलझन हो तो उसे अंदर दबा कर रखने के बजाय किसी से बात करना अधिक लाभदायक होता है। कई बार सिर्फ अपनी बात साझा करने से आधा तनाव खत्म हो जाता है। सकारात्मक बातचीत मन को मजबूत बनाती है। परीक्षा के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। लगातार पढ़ाई करने से मन थक जाता है और एकाग्रता घटती है। थोड़ी देर के लिए किताबें बंद करके आंखों को आराम देना या हल्का स्ट्रेचिंग करना दिमाग को फिर से तरोताजा कर देता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव मानकर लगातार तनाव लेना सही नहीं है। परीक्षा केवल हमारे सीखने की क्षमता को समझने का एक माध्यम है, हमारी पूरी पहचान नहीं। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास, ये तीन बातें मिलकर किसी भी तनाव को हराने का सबसे अच्छा रास्ता है। और हमें हमेशा यह बात याद रखना चाहिए कि असली परीक्षा सिर्फ एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं। असल जिंदगी हमारी मेहनत और हिम्मत से बनती है। तो आइए हम परीक्षा को डर की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें और तनाव को संतुलित सोच के साथ दूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद।
0: इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त होता है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब पेशे महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत सुनते हैं सिंघम फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है अजय गोगावाले ने।

अगला गीत सुनते हैं रब्ता फिल्म से अतीफ आसम की आवाज में। इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने और संगीत दिया है जैम 8 ने।

अगला गीत सुनते हैं गुडबाय फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अगला गीत सुनते हैं रॉय फिल्म से मीट ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है मीट ब्रदर्स ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से केकी के आवाज में। इस गीत को लिखा है विशाल ददलानी ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4 बज रहे हैं। श्रोताओं और पेशे बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल जगत, इस कार्यक्रम को आज मॉन हेरिटेज स्कूल तवांग के 8 विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इसे संचालन की है आकाशवाणी तवांग की दोजी ड्रमा ने। तो पेश है कार्यक्रम बाल जगत।

नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा मासिक बच्चों के कार्यक्रम बाल जगत सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम बाल जगत में मॉन हेरिटेज स्कूल तवांग के बहुत ही प्यारे प्यारे 8 बच्चे शामिल हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। तो सबसे पहले हमारे सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने आत्म परिचय देंगे, इसके बाद सभी 8 विद्यार्थियों द्वारा दैनिक मनलम प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद हिंदी कविता मातृभूमि, फिर होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय अंग्रेजी में, फिर होंगे देशभक्ति गीत भारत प्यारा देश हमारा, इसके बाद होंगे लाला लाजपत राय का संक्षिप्त जीवन परिचय हिंदी में, अंग्रेजी में कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, असम की स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ पर एक लघु कहानी हिंदी में कविता स्वदेश, महात्मा गांधी के संक्षिप्त जीवन परिचय हिंदी में, फिर अंत में समूह देशभक्ति गीत मेरा मुल्क मेरा देश। तो हमारे आज के कार्यक्रम बाल जगत

0: में हमारे बच्चों द्वारा प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम इस तरह से हैं। तो श्रोताओं, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बच्चों, मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने अपने परिचय हमें और हमारे श्रोताओं को कराएं।
1: ताशी तिलक, मेरा नाम सिरिंग हमो है और मैं कक्षा 7वीं की हूँ। मैं मॉन हेरिटेज स्कूल की विद्यार्थी हूँ।
2: ताशी तिले, माय नेम इज तिंजिन छैकी एंड आई स्टडी इन ग्रेड 6। माय स्कूल्स नेम इज मॉन हेरिटेज स्कूल।
3: नमस्ते आप सभी को, मैं तिंजिन वांगमो कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ और मेरे विद्यालय का नाम मॉन हेरिटेज स्कूल है।
4: आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ड्रमा छिरिंगी है और मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ और मेरे विद्यालय का नाम मॉन हेरिटेज स्कूल है।
0: नेक्स्ट।
5: नमस्ते, मेरा नाम तिंजिन इक्सो है और मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम मॉन हेरिटेज स्कूल है।
6: नमस्कार, मेरा नाम यंतन ड्रमा है और मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम मॉन हेरिटेज स्कूल है।
0: नेक्स्ट।
7: ताशी दिलेक, मेरा नाम तिंजिन वांगमू है और मैं कक्षा 7वीं की हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मॉन हेरिटेज स्कूल है।
8: आप सभी को मेरा आदर प्रणाम। मेरा नाम तेंजिन जैसल है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मॉन हेरिटेज स्कूल है जो तावांग में स्थित है। धन्यवाद।
0: चलिए, बहुत सुंदर। तो बच्चों, आप सभी तैयार हो ना कार्यक्रम के लिए?
9: यस मैम।
0: चलिए तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी तेंजिक मुनलम की

0: बहुत सुंदर। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूंगी कि युनतेन रेमा छठी कक्षा के हमें सुनाए हिंदी कविता।
1: मेरा कविता का शीर्षक है मातृ

0: बहुत सुंदर। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूंगी कि युनतेन रेमा छठी कक्षा के हमें सुनाए हिंदी कविता।
1: मेरा कविता का शीर्षक है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु चूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराले पग पग चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। चढ़ने अनेक चढ़ते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस जारियों में। अमराइया गनी है कोयल पुकारती है, बहती मले पवन है तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाए वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। धन्यवाद।
0: धन्यवाद। चलिए अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर चलते हैं। सातवीं कक्षा के चिरिंग लामू से हम सुनना चाहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय अंग्रेजी में।
2: टुडे आई एम गोइंग टू कास्ट लाइट ऑन द लाइफ ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नोन एज नेताजी रिमेन्स one of the most inspiring leaders in Indian history. His fearless spirit, powerful speeches and famous slogan "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga" continue to motivate students and youth even today. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. He was a prize student from a young age. He passed the Indian Civil Services exam in 1920, which was one of the toughest exams at that time. However, he left this respected job because he wanted to serve his country and fight for freedom. Unlike many leaders, Bose believed that freedom would not come through request alone. He believed in strong action and discipline. During World War II, he formed the Indian National Army with the help of Indian soldiers living abroad. His aim was clear: to free India from British rule. He gave the powerful call, "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga," which filled Indians with courage and hope. Subhash Chandra Bose also created the Azad Hind Government in 1943, which was recognized by several countries. This was an important step because it showed the world that Indians were ready to rule themselves. He addressed the nation through radio broadcasts to inspire people living in India. Though his death in 1945 remains a mystery, his ideas and sacrifices are still alive. His life teaches students to be fearless, honest and dedicated. He showed us that loving the nation means working hard and standing up for what is right. Let us remember Netaji not just in speeches but in our actions as responsible citizens. Thank you. Vande Mataram.
0: बहुत सुंदर। और बच्चों आप सभी ने सुना ना उन्होंने अपनी वार्ता में क्या कहा सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन परिचय के बारे में। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर स्लोगन बताया, क्या आप सभी ने गौर किया, याद है?
3: Yes, ma'am.
0: क्या था?
3: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
0: बहुत सुंदर। चलिए एक एक करके मैं आप सभी से कविताएं कहानियां सुनना पसंद करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आप सभी से एक देशभक्ति गीत सुनना चाहूंगी।

0: चलो जी, बहुत खूबसूरत गीत आप सभी ने प्रस्तुत किया और आपके देशभक्ति गीत सुनकर मुझे एक बात याद आया कि आप सभी को भी पता होंगे इस महीने हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, पता है ना आप सभी को?
1: यस मैम।
0: तो मुझे बताइए, आपकी बार हमारे देश भारत को आजाद मिले कितने साल हुए हैं, कितने बार के इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं?
1: 80 ईयर्स।
0: जी, हमारे देश भारत को आजादी मिले, अब हम 80वें स्वतंत्रता दिवस अब की बार यानी आने वाले 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तंजिन जैसल 7वीं कक्षा, आपसे सुनना चाहेंगे लाला लाजपत राय का संक्षिप्त जीवन परिचय।
1: मैं आज एक स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के बारे में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रसिद्ध लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की टिकरी के मुख्य स्तंभ थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक हर स्तर पर मजबूती प्रदान की। लाला जी का मानना था कि स्वदेशी अपना कर ही अंग्रेजों की आर्थिक रीढ़ तोड़ी जा सकती है। इसके लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव रखने में मदद की ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके। वे एक महान वक्ता और लेखक भी थे जो हमेशा युवाओं को हार से न डरने की प्रेरणा देते थे। उनका मानना था कि पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होते हैं। 1928 में जब अंग्रेजों ने बिना किसी भारतीय सदस्य के साइमन कमीशन भारत भेजा तो लाला जी ने लाहौर में इसका उग्र विरोध किया। साइमन गो बैक के नारों के साथ हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्य कर दिया। सिर और छाती पर गंभीर चोटें लगने के बावजूद उन्होंने निडर होकर घोषणा की कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया, जिसने पूरे देश में क्रांति की एक नई ज्वाला भड़का दी। आइए आज हम पंजाब केसरी के उस अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले। उठो देश के वीरों, लाला जी के सपनों का भारत बनाना है। हर दिल में देश प्रेम की अलग जगा कर तिरंगे की शान बढ़ाना है। लाला लाजपत राय जी अमर रहे, भारत माता की जय।
0: बहुत सुंदर। तो आप सभी ने इनके जो लाला लाजपत राय का संक्षिप्त जीवन परिचय से क्या सीखा, कौन सी लाइन आपको याद है? लाला लाजपत राय जी का निधन कब हुए थे?
1: 17 नवंबर 1928।
0: जी, बहुत सुंदर। अब हम 6 कक्षा के तंजिन छकी के तरफ आगे बढ़ते हैं और उनसे सुनते हैं अंग्रेजी में कविता।
2: टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोयम कंपोज्ड बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर। द

0: title of the poem is Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Thank you.
1: तो बच्चों, जैसे इन्होंने अंग्रेजी कविता प्रस्तुत की, कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो इन्होंने लिखा गया है कुछ दिया थे आपको, जैसे गाने हो, कविता हो,
0: पेपर बोट्स
1: जी, ये तो हुई कविता, लेकिन हमारे भारत का राष्ट्रगान जनगणमन उन्होंने ही लिखा था, है ना? चलिए, सातवीं कक्षा के तेंजिन वांगमू की तरफ चलते हैं और हम आपसे सुनना चाहेंगे असम की स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ पर एक लघु कहानी।
2: मैं यहाँ आज एक कहानी प्रस्तुत करने आई हूँ और मेरा कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के बारे में है। यह सच्ची कहानी सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय की है, जब पूरा देश अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए एक साथ खड़ा हो गया था। असम के एक छोटे से गांव गोहपुर में कनकलता बरुआ नाम की एक 17 साल की लड़की रहती थी। वह बहुत ही साहसी और देशभक्त थी। जब महात्मा गांधी ने देशवासियों से आजादी के लिए आगे आने को कहा, तो कनकलता भी अपने साथियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई। 20 सितंबर 1942 को गांव के लोगों ने तय किया कि वे पुलिस थाने पर लगा अंग्रेजों का झंडा हटाकर भारत का प्यारा तिरंगा फहराएंगे। कनकलता के हाथ में तिरंगा झंडा था। वह सबसे आगे चल रही थी और उसके पीछे सैकड़ों लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। जब जुलूस पुलिस थाने के पास पहुंचा, तो वहां के पुलिस अफसर ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कनकलता को धमकी दी कि अगर वे आगे बढ़े तो उन पर गोली चला दी जाएंगी, लेकिन कनकलता बिल्कुल नहीं डरी। उसने बहुत ही शांत और हिम्मत भरे स्वर में कहा, हम तो बस अपने थाने पर अपने देश का झंडा फहराने आए हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। यह कहकर कनकलता बिना किसी डर के तिरंगा लेकर आगे बढ़ने लगी। तभी पुलिस ने गोलियां चला दी। एक गोली सीधे कनकलता के सीने में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन गिरते गिरते भी उसने तिरंगे को नीचे मिट्टी में नहीं गिरने दिया। उसने अपने आखिरी समय में भी तिरंगे को बहुत कसकर पकड़े रखा और अपने साथी को सौंप दिया। केवल 17 साल की उम्र में कनकलता ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। उसकी इस हिम्मत ने गांव के हर बच्चे और बड़ों के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। आज भी कनकलता बरुआ को भारत की एक वीर और महान शहीद के रूप में याद किया जाता है। कनकलता बरुआ केवल असम का गौरव नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की शक्ति, निडरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे। अब हम छठी कक्षा के तेंजिन यिचो आपसे हिंदी कविता सुनना पसंद करेंगे, क्या आप तैयार हो?
3: आज मैं यहाँ आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो गया प्रसाद शुक्ल ने लिखा है और मेरे कविता का नाम है स्वदेश। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिससे ना जाती उधार हुआ होगा उसका उधार नहीं, जो बड़ा नहीं है भावों से बहती जिसमें रस्तार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम है जिसके राजा रानी, जिसने की खजाने खोले है नवरत्न दिए है लसानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते है जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भू का बार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन

0: जाने को है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सातवीं कक्षा की ड्रामा छरिन की आपसे हम सुनेंगे महात्मा गांधी का संक्षिप्त जीवन परिचय हिंदी में। क्या आप तैयार हैं?
2: जी मैम।
1: चलिए,
2: आज मैं आप सभी को भारत के महान राष्ट्रपिता के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरे विश्व में महात्मा और भारत में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। उनका सबसे बड़ा योगदान इस लड़ाई को एक आम जन आंदोलन में बदलना था। गांधी जी से पहले आजादी का आंदोलन मुख्यतः पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित था, लेकिन उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को इससे जोड़कर इसे राष्ट्रव्यापी बना दिया। गांधी जी के आंदोलनों की मुख्य ताकत उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत थे। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को चुकाया जा सकता है। अपनी इसी अटूट आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि सत्य और अहिंसा ही मेरा ईश्वर है। उनके नेतृत्व में 1920 का असहयोग आंदोलन और 1930 का दांडी मार्च ब्रिटिश हुकूमत के लिए बड़ी चुनौतियां बने। जब 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो देशवासियों में नई ऊर्जा बढ़ने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब भारत पर उनका राज खत्म होने वाला है। राजनीति आजादी के साथ साथ गांधी जी ने स्वदेशी, छुआछूत उन्मूलन और ग्राम स्वराज पर जोर देकर भारत के सामाजिक ताने बाने को भी सशक्त बनाया। आइए आज हम सब मिलकर बापू के दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और एक सशक्त, स्वच्छ और एकजुट भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे, तो बच्चों आपको और गांधी जी के बारे में क्या जानकारी है? जो अभी ड्रीमा छोरिन ने बताया उसके अलावा क्या जानकारी है? जैसे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था, पता है आपको?
2: जी मैम।
1: बताइए।
2: महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
1: जी, बहुत ही सही उत्तर दिया आप सभी ने। तो अब हम सातवीं कक्षा के तेंजिन वांगमू बी की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम आपसे सुनना चाहेंगे वेस्ट मैनेजमेंट पर एक वार्ता।
3: टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स टुवर्ड्स दैट विजन। मैनेजिंग आवर वेस्ट properly by reducing plastic use, segregating wet and dry garbage and recycling is a powerful act of patriotism that directly protects our soil, rivers and wildlife. In a breathtaking region like Tawang, sustainable waste management is even more urgent. Tawang is blessed with pristine high-altitude ecosystems, sacred monasteries and snow-capped peaks. But its unique local conditions demand special care. Tawang's fragile mountain environment makes it difficult for non-biodegradable waste to decompose, meaning single-use plastics and litter severely harm local biodiversity and pollute natural water streams. Furthermore, as tourist numbers swell, plastic water bottles and food packaging pile up along scenic routes and cultural landmarks. Like the Tawang Monastery. Harsh winters, heavy rainfall and steep terrain also make waste collection, transport and landfill maintenance significantly more difficult than in the plains. Protecting Tawang requires a joint effort, where locals and tourists alike adopt habits like carrying reusable bottles, supporting local segregation initiatives and keeping trekking trails completely litter-free. Jai Hind!
1: बहुत अच्छे, तो बच्चों हमारे आज के यह कार्यक्रम है बाल जगत, इसकी समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं। हालांकि मुझे तो आपसे और भी बहुत कुछ सुनने का दिलचस्पी है, फिर भी हमारे समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से एक देशभक्ति गीत जरूर से सुनना चाहूंगा।

0: जय हिंद।
1: बहुत अच्छे। तो बच्चों, हमें ये बताइए कि आप सभी को आज के हमारे आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम बाल जगत में शामिल होकर कैसा लगा?
0: हमें बहुत अच्छा लगा।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है और मैंने भी बहुत ही ज्यादा आनंद उठाया। हम आशा करते हैं हमारे श्रोताएं भी आपके कार्यक्रम को बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे और आज आप सभी ने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम में शामिल हुए। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम बाल जगत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब पेश है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन। तो पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन। इसी के साथ ही कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहे।
1: ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। विश्व के जनजातीय लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्वदेशी ज्ञान परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बाल्टन दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहान ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर

2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने उपनिवेशिक शासन में मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने यह बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। सिंदूर महारक्तदान यात्रा का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का शौर्य दिखाया, वहीं यह विशाल रक्तदान शिविर करुणा और संवेदना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि शिविर में महाराष्ट्र के करीब 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि यह पहल निस्वार्थ सेवा और सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता की भावना को दर्शाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर रक्तदाता और रक्त प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने अपने तरीके से रक्त की सेवा कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से रक्तदान को एक नियमित आयोजन बनाने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जनभागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने 33 राज्य और जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन एवं लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। मंत्रालय ने बताया कि NBA द्वारा अब तक किया गया कुल वितरण 166 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वितरण जैव विविधता संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और भारत के समृद्ध जैविक संसाधनों के संरक्षण में जुटे समुदायों की आजीविका के बीच संबंध को और मजबूत करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा उपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून 3 महत्वपूर्ण स्तंभों, प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित है। श्री शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य अधिक प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भागीदारी के दौरान यह बात कही। पुडुचेरी पुलिस को बधाई देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालांकि पुडुचेरी पुलिस में 5,000 से कम कर्मियों की संख्या है, फिर भी उसे पुडुचेरी की रक्षा करने, इसकी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और समृद्धि आध्यात्मिक विरासत वाले इस केंद्र शासित प्रदेश के सम्मान और गरिमा की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने के इस ऐतिहासिक अवसर के साथ पुडुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र

0: सुरक्षित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। विश्व के जनजातीय लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्वदेशी ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने जनजातीय समाज के बुजुर्गों और ज्ञान संरक्षकों की परंपराओं और बुद्धिमत्ता को नमन किया। उन्होंने सभी से अपने समुदायों को मजबूत करने और राष्ट्र को आकार देने वाली संस्कृतियों का उत्सव मनाने का आग्रह किया। राज्यपाल नंद किशोर यादव ने भी इस अवसर पर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने और समृद्ध संस्कृति परंपराओं तथा विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल संरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता के अनुसार 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जलंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। इसके अलावा सांबा जिले में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का संचालन शुरू हो गया है। कठुआ, अनंतगांव और जम्मू में भी इसी तरह के कार्गो टर्मिनलों के लिए मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चालू चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर जोर दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज शाम दिल्ली में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा का अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्रा जत से को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालटल बेस कैंप में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28 जत्से को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage. The campaign marks the fifth year of the Har Ghar Tiranga initiative, which began in 2022 and has since evolved in one of the country's largest public participation movements. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized.

ने कम खाने लेंगे जी आकाशवाणी इटनर के लिए शिशु हिंदी का संगीत जो जब लिखने कम खाने चलेंगे जी आकाशवाणी इटनर के लिए शिशु इंची का संगीत सना सा नमी मोटो नमता लेरम नौ नब चीज लेंगे जी नगर नमता लेरम असिरो युग को जब लम खाने से शिशु जैसे कुंजोनिंग बेजे ठिसंगुक नमतर गोरम संपचित समय तो एम्पर नौ नब चीज लेंगे कम खाने चीज नगर निसल खाचन शोपानं लोपसंग तोपतन से शिशु सना सा Tundak lerim tretin lapja, non of chisel lake, and come a collegial energy. Non of chisel grocer lerim set a chisel rock and

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं अब पेशे कार्यक्रम जरोखा। जरोखा में हम आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से आज एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियों से। तो चलिए पहले आपको आज के कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शिल्दन में सुनिए लामा मैतोटशी और साथियों से शिल्दन लामा छुपा सोगोर थुपतिन रिमे केपे मन्नम लोसंग गेतिन मा सिमे इंदिन और मुआ मन्नम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आज शाम 7:00। शाम 7:10 पर कार्यक्रम महफिले कवाली में आनंद लीजिए। दिल्ली 6 फिल्म से जावेद अली और कैलाश खेर और फिजा फिल्म से कदर गुलाम मुस्तफ़ा मुर्तजा गुलाम मुस्तफ़ा एआर रहमान और श्रीनिवास से चंद कवाली। तत्पश्चात कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपात। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर। शाम 7:55 पर कार्यक्रम

देशभक्ति गीत में सुनिए राजीव फिल्म से एक देशभक्ति गीत। आज शाम 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसार स्पोर्ट्स कैन आज शाम 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 9 आज रात 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी। आइए अब आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 10 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार के साथ, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए पंडित जसराज से चंद हिंदी देव गीत कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आनंद लीजिए संगम लिंगी और ओतो के म्यूली से चंद इदू मिश्मी आधुनिक गीतों का कल दोपहर 3 बजे। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, तत्पश्चात कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई, निर्जा फिल्म से कविता सेठ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर, केदारनाथ फिल्म से देव नेगी और आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्र की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का। कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए रब्ता फिल्म से अरिजीत सिंह, कपूर एंड सन्स फिल्म से आर्को, तमाशा फिल्म से अरिजीत सिंह और अलका याग्निक, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बेनी दयाल, नाजिया हसन और सुनिधि चौहान, मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान, जबरिया जोड़ी फिल्म से जसीर देसाई और अल्तमाश फरीदी, सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन, बर्फी फिल्म से पपौन और सुनिधि चौहान, छिछोरे फिल्म से तुषार जोशी और एक मैं और एक तू फिल्म से बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार कल शाम 4:45 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथलेरे में सुनिए सेरू गांव के श्री लामा खंडू द्वारा कैजोकोंजो और बेंजा ट्रिजुन उपन्यास का तीसरा भाग कल शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनिए श्री लोपसंग तोपदिन द्वारा दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। 5:35 पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम थ्विटिन लपचा लेरिम सेडा शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरुखा। बौद्ध भक्ति गीतों का कार्यक्रम शिलनेरी में सुनिए शास्त्र थुपतिन सिरिंग और साथियों से शिलन लामा छपा कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार कल शाम 7 बजे। कल शाम 7:10 पर किसानों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। कल शाम 7:30 पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत में आनंद लीजिए एक रिश्ता फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक, तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू और नाम गुम जाएगा फिल्म

से अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से एक देशभक्ति गीत। कल शाम 8 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदबहा पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन कल शाम 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 9 कल रात 9:00। कल रात 9:16 पर आकाशवाणी तवांग के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसार किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मुनपा में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

Yamo

Yama

Soda

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन

0: अपने आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रखा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Prashant Kumar Sinha. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and to promote India's cultural heritage.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम महफिल कवाली। कार्यक्रम महफिल कवाली का पहला कवाली सुनते हैं दिल्ली 6 फिल्म से जावेद अली और कैलाश खेर की आवाजों में।

0: दिल्ली सिक्स फिल्म के इस कवाली के साथ ही कार्यक्रम महफिल कवाली यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपात। कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपात में आज आप सुनेंगे कानू घोष और नालिनी जी से उर्दू भाषा में एक गीत का पाठ। गीत के शीर्षक है सारे जहां से अच्छा और इसे लिखा है लेखक मोहम्मद इकबाल ने। तो पेश है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपात।
1: देश की तारीफ में आज हम आपको एक बहुत मशहूर कौमी तराना सिखाएंगे। उसके बोल मालूम है क्या है? सारे जहां से अच्छा। ये गाना आपने सुना है?
2: यस सर।
1: तो आप लोग सीखेंगे ना?
2: यस सर।
1: और हमारे साथ नलिनी जी भी आपको ये गाना सिखाएंगे। आपको मालूम है ये गाना किसने लिखा है? इकबाल। बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं जिन्होंने देश की तारीफ में ये गाना बहुत साल पहले लिखा है। तो आप लोग कागज पेंसिल निकालिए और गाना लिखिए। सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। लिख लिया ना? आगे लिखिए। हम बुलबुले। हम बुलबुले। बुलबुले नहीं, बुलबुले। हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा। तो बच्चों ये तो हो गई इसकी स्थाई। अब लिखिए इसका पहला अंतरा। पर्वत वो।

0: पर्वत नहीं, पर्वत बा लिखना है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, और इसके बाद फिर पहली लाइन आ गई कि सारे यहां से अच्छा। तो अब पहला अंतरा लिख लिया ना आपने, अब दूसरा अंतरा लिखिए, गोदी में खेलती हैं, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, आगे लिखिए, गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा, इसके बाद फिर पहली लाइन आ जाएगी सारे जहां से अच्छा। तो अब तीसरा अंतरा लिखिए, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये दो बार तो ऐसे आएगा है, हिंदी है हम, हिंदी है हम, और तीसरी बार हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदोस्तान हमारा, और इसके बाद फिर पहली लाइन आएगी सारे जहां से अच्छा। तो आप लोगों ने ये गाना लिख लिया ना सबने, अच्छा इस गाने की ताल है बच्चों कहरवा, क्या नाम है इसका ताल का,
1: कहरवा,
0: और इसमें चार मात्रा होती हैं, कितनी मात्रा होती हैं,
1: चार।
0: तो इसको पहले तबले पे सुनो।

ये तो इसकी ताल हुई। अब आपके समझ में आ गया कि कहरवे की ताल क्या होती है। अब बच्चों इस गाने को हम लय में पढ़ के आपको बताएंगे और आपने भी साथ साथ याद करना है ताकि आपको इस गाने की लय की बोल बाट समझ में आ जाए।

0: बच्चों आप पूरे गाने की आपको लय की बोल बाट समझ में आ गई ना?
1: यस सर।
0: अच्छा अब इसको हम आपको स्वर में सिखाएंगे। तो नलनी जी ये गाना कौन से स्वर से है?
2: पहले काले से।
0: पहले काले से। तो बाजे में देखिए पहला काला कहाँ है?

0: ये पूरे एंट्रेस के आपको याद हुए ना कुछ?
1: यस सर।
0: अच्छा, अब इसका हमें, नलिनी जी आप गाइए इसको, तीसरा अंतराय बच्चों से जरा फिर गवाइए। मजहब नहीं सिखाता,

आखिर में दूसरी बार जब ये ऊपर की ट्यून में आएगा तो हमारा को लंबा करना है। अब ये हिंदुस्तान हमारा सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये जो अभी हमने ट्यून में सिखाया है ये सब लोग मिलके गाएंगे तबले के साथ। 1 2 3 4

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद हो गई। अब घर पे जाके इसकी खूब प्रैक्टिस करना, करेंगे ना?
1: यस
0: सर। अच्छा बच्चों, नमस्कार।
2: श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत बात यहीं पर समाप्त होता है।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित है, क्योंकि वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक देशभक्ति की भावना का जश्न मनाते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के साथ मिलकर आज ईटानगर के नीति विहार स्थित गोल्डन जुबली स्टेट बैंक्वेट हॉल से पूरे राज्य में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए अगस्त क्रांति दिवस की याद में भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा और प्रतिभागियों के साथ मिलकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें संस्करण के जश्न के तहत कला और संस्कृति विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी नागरिकों से गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने इसे एक ऐसा जन आंदोलन बताया जो देशभक्ति की भावना को फिर से जगाता है और भावनात्मक एकता को मजबूत करता है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देश के प्रति सेवा और समाज में योगदान के लिए पूर्व सैनिकों और गांव बुढ़ास को सम्मानित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने कल तिराप जिले में विकास से जुड़ी अहम पहलों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू करने और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खास ध्यान दिया। बैठक में मुख्य सचिव ने अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और समय पर काम पूरा करने, क्वालिटी सुनिश्चित करने, असरदार निगरानी और विभागों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने

0: सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे लोगों के फायदे के लिए सरकारी योजनाओं को असरदार ढंग से लागू करें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए आपस में मिलकर काम करें। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल ईटानगर के खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में 5 दिन तक चलने वाली 13वीं दोरजी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के लिए सालाना आर्थिक मदद को इस साल से 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा कि आर्थिक मदद बढ़ाने का मकसद राज्य के बैडमिंटन इकोसिस्टम को और मजबूत करना और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि 50 लाख रुपए की बढ़ी हुई राशि चैंपियनशिप के अगले संस्करणों के लिए भी जारी रहेगी। राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से हो रहे विस्तार का जिक्र करते हुए श्री खांडू ने बताया कि प्रस्तावित दोरजी खांडू बैडमिंटन एकेडमी के लिए संगे लादन स्पोर्ट्स एकेडमी के पास उनके द्वारा दान की गई 20,700 वर्ग मीटर जमीन तय की गई है। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत खोंसा ईस्ट के विधायक वांगलाम साविन ने आज मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता की मौजूदगी में खोंसा में तिरंगा अभियान बुलेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बुलेट रैली का आयोजन संयुक्त रूप से तिराप जिला प्रशासन ने तिराप जिले की AR-13 तिराप राइडर्स और जारो राइडर्स टीमों के सहयोग से किया था। तिरंगा अभियान बुलेट रैली का नेतृत्व करते हुए मुख्य सचिव ने तिराप के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि हर घर में गर्व के साथ तिरंगा फहराया जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi has appealed to the citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Vikshit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Tricolor is the pride of the nation and a constant source of inspiration to always give best for the country." The Prime Minister expressed happiness, saying that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram as it marks its 150th anniversary. Joining the rest of the nation in celebrating the spirit of patriotism, Governor Lieutenant General K.T. Parnayak retired along with Chief Minister Pema Khandu and Deputy Chief Minister Chona Main launched the statewide Har Ghar Tiranga campaign from the Golden Jubilee State Banquet Hall, Niti Vihar, Itanagar, today, which also commemorates August Kranti Divas, Quit India Movement Day of 1942, launch of Mahatma Gandhi. On the occasion, the Governor, along with the Chief Minister, handed over the national flag to youth and joined the participants in singing the Rashtriya Geet Vande Mataram. Staff artists of the Department of Art and Culture presented patriotic items as part of the celebrations marking the 5th edition of the Har Ghar Tiranga campaign. Addressing on the occasion, the Governor called upon every citizen to proudly hoist the national flag and actively participate in the campaign, describing it as a people's movement that rekindles patriotism and strengthens emotional integration. As part of the program, the Governor and the Chief Minister felicitated ex-servicemen and Gau Buras in recognition of their service to the nation and contributions to the society. Union Education Minister Prahlad Joshi today held a meeting with the secretary and senior officials of the Education Minister on matters concerning the National Testing Agency, NTA. In a social media post, Mr. Joshi said they deliberated on key matters requiring attention and steps ahead to further strengthen institutional mechanisms, streamline processes, and ensure greater responsiveness to students. He said that the government's main focus remained on building a robust, transparent and credible examination ecosystem that serves the aspirations of every student. Chief Secretary Manish Kumar Gupta, IAS, undertook a comprehensive review of

राजी फिल्म की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8 बजे है। श्रोताओं अब पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत सुनिए आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमे। आज के इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान के मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा से। इन्होंने फरमाइश किया है चलते चलते फिल्म से आया गीत किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस नवकर निर्मला नवकर और विशाल नवकर से और मलकापुर के नारायण इंगले सोपान तायादे और आशीष मुरेखर से। इन्होंने फरमाइश किया है राम और श्याम फिल्म से गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शकील ने और संगीत दिया है नुशद ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए कुछ फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर, जो हमें प्राप्त हुआ है रिग्नी छत्तीसगढ़ की दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी से। इन्होंने फरमाइश किया है बेताब फिल्म से यह गीत शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है तोरोवल नवन शहर पंजाब के गगनदीप ठंडी, तृप्ति कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रियम ठंडी, बेबी वामिका और वानी ठंडी से, और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह से। इन्होंने फरमाइश किया है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश का, जो हमें प्राप्त हुआ है मजनू का टीला दिल्ली के कामल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा से, और सतना मध्य प्रदेश के उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक से। इन्होंने फरमाइश किया है सत्य पे सत्ता फिल्म से आया गीत किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है गुलशन बौरा ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत का नाम और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसी यादों, कुछ और नगमों के साथ।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवा केंद्र है। समय संध्या के 8:30 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैंप, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की, कहा जो लोग खेलों में भाग लेते हैं वे समृद्ध होंगे। अश्मिता चालिहा ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, जीता कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने रजत पदक जीता। एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पांडियन ने रजत पदक हासिल किया। निकी कालियांदा पुनाचा और गोंजालो एस्कोबार ने पुरुष डबल्स लैंगस्टन ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। डूरंट कप फुटबॉल में शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 85वें संस्करण की अगुवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां अश्मिता चालिहा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान कियान शी को हराकर पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। सुनते हैं इस मुकाबले पर खास रिपोर्ट।
2: मुकाबले की शुरुआत अश्मिता के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन पहला गेम हारने के बाद अश्मिता ने शानदार वापसी की और 53 मिनट तक चले मुकाबले में हान कियान शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हरा दिया।
3: A first title in 2026, Shmita, the world number 50, has beaten the world number 35 in sensational form. That's the final. That's the result. 14-21, 21-14, 21-14.
2: अश्मिता ने पहले क्वालिफायर में रीरिना

0: और फिर किम मिन जी को सीधे गेम में हराया और क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हीना अकेजी को 20-22, 21-15 और 21-19 से मात दी। सेमीफाइनल मुकाबले में अश्मिता ने अपने ही देश की खिलाड़ी रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। वो इस वर्ष सुपर 300 खिताब जीतने वाली देविका सिहाग और तन्वी शर्मा के बाद तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कुल मिलाकर कोरिया मास्टर्स फाइनल में जीत के साथ वो इस साल सिंगल्स BWF खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी है। उनसे पहले तन्वी ने ताइपे ओपन, पीवी सिंधु ने जापान ओपन और देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीता है। इससे पहले अश्मिता ने 2018 और 2023 में खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया था।
1: She's come through, add to her three titles she's picked up on the International Challenge Series since 2018. The last one was in 2023, the Maldives International. And the 26-year-old is back on the podium. First in 2026.
0: इस जीत के साथ अश्मिता पहली बार रैंकिंग में टॉप 40 में जगह बनाएंगी। मई में 3 महीने तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए BWF टूर में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात एथलेटिक्स पर। ओरेगन के यूजीन में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2.21 मीटर की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कूद की बराबरी की। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसी प्रतियोगिता के पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता शाहनवाज खान को बधाई दी है।
3: बसंत ने पहले 2.06 मीटर, फिर 2.12 मीटर और 2.17 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद 2.21 मीटर की शानदार जंप ने पोडियम पर उनकी जगह पक्की कर दी।
4: This is Basant's second attempt at 2.21. Yes! Oh, the cheers that came up there. He's got a lot of supporters in the crowd.
3: टॉप तीन एथलीटों में 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन काउंटबैक नियम के आधार पर बसंत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अंतर्गत अल्जीरिया के यूनिस अयाची ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि ब्रिटेन के ओटिस पूल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में 7.84 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ कांस्य पदक जीता। ये लंबी कूद में किसी भारतीय पुरुष का पहला विश्व स्तरीय पदक भी है। शाहनवाज ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए तीसरे राउंड में 7.84 मीटर की जबरदस्त जंप लगाई और फिर पांचवे राउंड में 7.83 मीटर की जंप के साथ दुनिया के बेहतरीन एथलीटों के बीच अपनी और पोडियम पर अपना स्थान बनाया। इटली के एंजोली ने 7.97 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैक ग्रोडर ने 7.96 मीटर के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने 2021 की अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन, कुल 3 पदकों की बराबरी कर ली है। प्रतियोगिता खत्म होने में अभी 1 दिन बाकी है और भारत के पास टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम करने का सुनहरा मौका है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंड्यन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलोग्राम का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर देश का मान बढ़ाया। वियतनाम के हुआंग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। लैंगस्टन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के निकी कालियांडा पुनाचा और इक्वाडोर के गोंजालो एस्कोबार की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। एक रिपोर्ट।
5: पुनाचा और एस्कोबार की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने केंटकी के लेक्सिंगटन में अमरीकी जोड़ी आंद्रे इलागन और कार्ल पॉलिंग को 6-7, 6-3, 11-9 से हराया। 1 घंटा और 42 मिनट चले इस मुकाबले में पहला सेट हारने के बाद पुनाचा और एस्कोबार ने बढ़िया तालमेल का परिचय दिया और दूसरा सेट जीतकर बराबरी हासिल की। तीसरे सेट के सुपर टाई ब्रेक में कोई भी जोड़ी 2 अंक से ज्यादा की बढ़त नहीं बना पाई और मुकाबला बराबरी पर बना रहा। हालांकि एक समय पुनाचा और एस्कोबार 7-9 के स्कोर के साथ हार के कगार पर थे। इसके बाद पुनाचा गोंजालो की जोड़ी ने लगातार 4 अंक

0: हासिल करके मैच का पासा पलट दिया। इस दौरान उन्होंने दो मैच पॉइंट बचाए और फिर शानदार वापसी करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुनाचा का ये 11वां एटीपी चैलेंजर डबल्स और 2026 सीजन का 5वां खिताब है। एटीपी चैलेंजर सर्किट में इस जोड़ी का ये पहला खिताब है। 31 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी पुनाचा ने जून में थाईलैंड के पुरचे इसारो के साथ जोड़ी बनाकर ओपन सोप्रा स्टेरिया दी लियोन का खिताब जीता था। इसके साथ ही इस साल की शुरुआत में साकेत मायनेनी के साथ बेंगलुरु ओपन 2 एटीपी चैलेंजर 50 और इसारो के साथ मिनोरका एटीपी चैलेंजर 100 और चेन्नई एटीपी चैलेंजर 50 भी जीतने की उपलब्धि उनके नाम है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात हॉकी की भी कर लेते हैं। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए का खिताब अपने नाम कर लिया। इस टीम ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए रोमांचक फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया।
2: फाइनल में मनदीप केर केट्टा ने दूसरे मिनट में गोल करके ओडिशा को शुरुआती बढ़त दिलाकर मध्य प्रदेश पर दबाव बनाया। आखिरकार 37वें मिनट में सोहेल अली ने मध्य प्रदेश के लिए बराबरी का गोल किया। मुकाबले के 54वें मिनट में इस टीम ने कप्तान दीपक प्रधान के जरिए फिर से बढ़त हासिल कर ली। मध्य प्रदेश ने आखिरी पलों में एक और बराबरी का गोल करने के लिए जोर लगाया। हालांकि ओडिशा ने अपनी 2-1 की बढ़त बरकरार रखी। इस जीत के साथ हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा चैंपियन बन गया। वहीं तीसरे स्थान के मैच में हॉकी पंजाब ने शानदार अटैकिंग खेल दिखाते हुए हॉकी झारखंड को 6-3 से मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। गुरविंदर सिंह ने 11वें मिनट में गोल दागकर पंजाब को बढ़त दिला दी थी। इसके बाद टीम के कप्तान जर्मन सिंह ने 34वें और 36वें मिनट में तेजी से 2 गोल किए। चरणजीत सिंह ने 52वें और 53वें मिनट में 2 गोल दागे, जबकि अजय पाल सिंह ने 41वें मिनट में गोल करके पंजाब के गोलों की संख्या पूरी की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के हनोल से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 50वें संस्करण की अगुवाई की। ये कार्यक्रम नशा मुक्त भारत थीम और फिटनेस को हां कहें नशे को ना कहें संदेश पर केंद्रित था। संडे ऑन साइकिल को एक जन आंदोलन बताते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पहल एक बड़े अभियान में बदल गया है। देशभर में 10,000 से अधिक स्थानों पर युवाओं ने साइकिलिंग के माध्यम से यह संदेश पहुंचा है।
3: संडे ऑन साइकिल की 85th एडिशन है। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारे देश में 18,000 से अधिक स्थान पर युवाओं ने साइकिलिंग करके संदेश दिया है कि चलो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के संदेश के साथ इस साइकिलिंग मूवमेंट आगे बढ़ रही है। देश के युवा उसके साथ जुड़ रहे हैं। आज मुझे खुशी है ग्रामीण क्षेत्र में भी साइकिलिंग का क्रेज आगे बढ़ रहा है।
1: इस दौरान खेल मंत्री ने खेल बजट और फुटबॉल के खेल में बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की।
3: फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। ISL इस बार भी होस्ट होगी। फुटबॉल क्लब नई बन रही है। सरकार ने 36,000 करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें भी हमने एकेडमिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए निर्णय करा है। अलग अलग डिसिप्लिन की एकेडमी को प्रोत्साहित करी जाएगी और ये एकेडमी में भी विशेष करके जो रिटायर्ड एथलीट है वही एकेडमी चालू करे, क्योंकि एथलीट स्वयं स्पोर्ट्स को जीता है और जो व्यक्ति स्पोर्ट्स को जीते है उसमें जज्बा होता है। इसका जज्बा को लाभ लेके हम मेडल टेली को आगे बढ़ाएंगे।
1: और अब बात फुटबॉल पर भी कर लेते हैं। 135वें डोरंट कप फुटबॉल के ग्रुप ई मैच में शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को 5-0 से हराया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कल जीत से शिलोंग लाजोंग एफसी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार है। एवर ब्राइटसन साना ने 2 गोल किए, जबकि अभय गुरंग ट्रमेकी लामुरोंग और फिगो सिंडाई ने भी 2 गोल दागे। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत ने 3 दिवसीय अभ्यास मैच में श्रीलंका क्रिकेट एकादश को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 207 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 45 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष जुड़ गए। विशेष, कैसा रहा टीम का प्रदर्शन? टीम कितनी तैयार है मुकाबले से पहले?
4: देखिए, अगर मुकाबले की बात करें प्रशांत, तो इस मुकाबला ये जो कोलंबो के मैदान पर खेला जा रहा है वहां पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जहां उनके निशान मधुशंका

0: और रविंदु रसंथा जैसे खिलाड़ियों ने ओपनिंग पार्टनरशिप करके ही उनको मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। 363 रन उन्होंने अपनी पहली पारी में बनाए थे
1: जी।
0: लेकिन जवाब में जब भारतीय टीम खेलने के लिए आई तो सिर्फ देवदत्त पडिक्कल एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया। हालांकि रविंद्र जडेजा ने उनका भरपूर साथ निभाया। तीसरी पारी में श्रीलंका सिर्फ 200 रन ही बना सकी 6 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में भारत को 207 रन चेस करने थे जो कि भारत ने बहुत ही आसानी से कर लिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शानदार खेल दिखाया।
1: रविंद्र जडेजा की आपने बात की, उनकी वापसी भी हो रही है और टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी है, कैसा रहा उनका प्रदर्शन और कितने तैयार है वो आगामी श्रृंखला के लिए?
0: जी, अब जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो काफी तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट चटकाए थे। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने का उनको मौका मिला तो उन्होंने 63 रन बनाए। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा जो है दूसरी पारी में भी उन्होंने 2 विकेट लिए, हालांकि उनको बल्लेबाजी के लिए इतना ज्यादा मौका चौथी पारी में नहीं मिला और वो 22 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए।
1: जी, उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम ने जिस प्रकार से इस अभ्यास मैच में प्रदर्शन किया है श्रृंखला में भी बेहतर प्रदर्शन करे।
0: जी बिल्कुल, और 15 अगस्त को भारत अपना ऐतिहासिक 600वां टेस्ट मुकाबला खेलेगा।
1: जी बिल्कुल, और श्रोताओं समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
4: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
5: जय।
4: भारत माता की
5: जय।
4: भारत माता की
5: जय।
3: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
3: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से

0: देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: Gandhi Devas, as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री

0: सिद्धार्थ जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर

0: पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPAC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1300 flights cancelled while 3,00,000 people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
2: Jo khelega, wo khelega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki.
3: Jai.
2: Bharat Mata ki.
3: Jai.
2: Bharat Mata ki.
3: Jai.
1: India finished at the fourth spot on the medals table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and the 2nd of August. Indian athletes won 39 medals including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

0: joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary examination over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. Three JPAC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1,300 flights cancelled while 3 lakh people relocated. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं। चलिए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात साप्ताहिक मन पर कार्यक्रम, कल शाम 5:35 पर और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिन्दी फिल्मी गीत कल शाम 8:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2:00 अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्रीमती शिखा देखा, श्री हेमंता स्वर्गरी और श्री हमसरिंग